नमस्कार। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते ये आकाशवाणी जलंधर केंद्र दा FM रेनबो चैनल है। अज शनिवार है,

FM बैंड 102.7 MHz ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। हुणे तुसी सर्वण कीता भगती रस दा प्रोग्राम वंदना ते हुण वेला हो गया है FM न्यूज़ हेडलाइंस दा।

0: रॉकेट गाय फुल जड़ी से तूने भरे ले पॉकेट। अरे वारा बन मेरे जैसा बन, ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर।
1: Fugadi Poo, Fugadi Poo, you like me and I like you too. Fugadi Poo, Fugadi Poo, you like me and I like you too. You like

ब्रेकफास्ट ना करन ता फिर भी चल जाएगा। नहीं चलना जी, ब्रेकफास्ट तो बिना ता कुछ भी नहीं चलना, तो हड़ा पूरा दिन खराब हो सकता है। तो लो जी मम्मी जी, अज दे ब्रेकफास्ट लई कुछ हेल्दी जिहा नोट कर लो। सब तो पहला ता वेजिटेबल पोहा, हल्का टेस्टी ते एनर्जी नाल भरपूर है। ते फिर पनीर या वेजिटेबल स्टफ्ड पराठा तुसी बना सकते हो, नाल दही या प्रोटीन भी मिलेगा ते पेट भी देर तक भरिया रहेगा। ब्राउन ब्रेड वेजिटेबल सैंडविच जिदे विच तुसी करना कुछ नहीं है, तुसी आसे पासे मायोनीज हुंदी है ना, मायोनीज ओ लानी है। फिर उस तो बाद वेजिटेबल्स कट के ओदे विच नमक मिर्च मसाला पा के वेजिटेबल्स दे विच

ऑडियोज भी काफी सारी भेज देती है, लेकिन हुण सुनदे आ एक छोटा जिहा गीत ते गीत दे उस पार असी बाकी मैसेजेस नू भी पढ़ांगे। तो चलो जी गीत सुनदे आ ते जाना किते नहीं है क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है जी, केड़ा दिल अपना पंजाबी।

एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो सोमवार तक सैशेल्स के दौरे उत्ते होंगे। सैशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के 50 साल समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह अज गुजरात के 14 शहरां विच भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत करनगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर तो पैदा ताप की वरतों करन वाला दुनिया का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। वेनेजुएला विच आए भयानक भूचाल विच मरण वालों की गिनती 920 हो गई है। भारत ने सहायता लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान मामले में गिरफ्तार किए गए सारे 8 मुलजमान 29 जून तक अदालती हिरासत में भेज दिता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले हफ्ते 96.3 करोड़ डालर वध के 632 अरब डालर तो वध हो गया है। 3 जुलाई तो शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ यात्रा लई तैयारियां तेज हो गई ने।

सब कुछ कर देने के। लफ्ज़ ही लाते हैं नज़दीकियाँ, लफ्ज़ ही तन्हा छोड़ देते हैं, लफ्ज़ ही लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, लफ्ज़ ही रब से जोड़ देते हैं, लफ्ज़ ही बनते हैं हमारे लिए हर वो किताब, लफ्ज़ ही रब से नाते तोड़ देते हैं। और लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना सीखिए, लफ्ज़ ही जीवन को हर एक नया मोड़ देते हैं। सो लफ्ज़ां दी कहानी जो मैं तुहानू शायरी जरिए अर्ज़ कीती है, कुछ इहो जिही कहानी अर्ज़ कर रहे ने जी महताब विरक अपने अगले ट्रैक दे विच। ते इंतज़ार रहेगा साढ़े दोस्तों का, उन्होंने प्यारे प्यारे वट्सएप के उपर आए हुए मैसेजेस दे विच आई हुई शायरी का, तो उस शायरी नू पढ़ांगे ते उस दे नाल मिलते जुलते गज़ल गीत असीं तुहाडे वास्ते प्ले करांगे। पर फिलहाल दे लई सुनदे आं जी अगला ट्रैक महताब विरक की आवाज़ दे विच।

वेलकम बैक जी, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी जलंधर 103.6 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी अमृतसर, न्यूज़ ऑन AIR दे जरिए दोस्त इस वेले जुड़े हुए ने प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच। और इस प्रोग्राम दे विच अगली शायरी साडे तक भेजी है जी साडे अजीज़ दोस्त उदय चंद्र जी ने, प्यार भरी प्यार नाल भिजी हुई

धड़कने भी अब बेताब होने लगी है, अब आ भी जा, तेरे बिना शामें उदास होने लगी है, अब आ भी जा, बहुत तड़पा लिया इन यादों ने मुझे ऐ सनम, मुद्दतों बाद ही सही तेरी मेरी वो शाम होने लगी है, अब आ भी जा, धड़कने अब बेताब होने लगी है, सनम अब आ भी जा, और तेरे बिना शामें उदास होने लगी है, अब आ भी जा।

0: वाणी आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन स्वीकार करिए, अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। और आज का अंक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं एफएम रेनबो 102.6 पर। आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे और आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ होते हैं एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स, जो आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं। पर आप जुड़ते हैं प्रतिदिन, इसमें कोशिश करते हैं कि इसमें आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं और हमारी कोशिश होती है कि हम उस समस्या का समाधान करें। आज हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, वो थोड़ा सा हटके जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी से गहरा जुड़ा जरूर है। और साथ ही साथ सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तभी हम उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं। तो विषय सुन लीजिए, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी दो रेडियो डॉक्टर, और दोनों का स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन बधाल, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। नमस्कार मैम, स्वागत।
2: धन्यवाद शालिनी जी, नमस्कार श्रोताओं।
1: और हमारे साथ हमारी दूसरी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर स्मृति सिंह, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैत्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है स्मृति हमारे स्टूडियो में आपका।
3: थैंक यू, नमस्कार, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: श्रोताओं से पुनः एक बार ये रिक्वेस्ट करें कि आपको इस कार्यक्रम को सिर्फ सुनना नहीं है, आपको अपने मन की बात, यानी आपको जो जो समस्याएं इससे रिलेटेड आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनको हमारे साथ शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास सॉल्यूशंस हैं और वो आपको फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान पूरी कोशिश करेंगे 4 बजे तक देने की। तो सबसे पहले कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सुमन बधाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो ये बताइए पीएमआर डिपार्टमेंट क्या है और ये क्या कार्य करता है?
2: पीएमआर डिपार्टमेंट, फिजियाट्री भी बोलते हैं, पुनर्वास, ये शुरुआती दौर में तो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, दर्द, न्यूरो रिहैबिलिटेशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इनके इलाज में ये सहायता करते थे। इस समय ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के किसी भी प्रकार या उसके बाद उसको कैसे समाज में पुनर्स्थापित करना है, चाहे वो उनकी वोकेशनल नीड हो या उनको वापस मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में वापस रीइंस्टेट करने का कार्य है, मुख्यतः लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उसके बारे में ये हर तरह की कंडीशंस को ये कार्य करते हैं।
1: जी, तो बहुत कुछ आता होगा आपके इस जो विभाग के अंतर्गत, जिस तरह की भी आप बात कर रहे हैं लोकोमोटर

0: डिसऑर्डर्स बहुत तरह के हो सकते हैं और बहुत कारणों से हो सकते हैं, तो उन कारणों की बात भी हम जरूर करेंगे कार्यक्रम में। पर डॉक्टर स्मृति, आपके हिसाब से कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं इसके अंदर?
1: इसको हम दो तरीके से बांट, सबसे पहले ऑफकोर्स जो जन्म लेता है बच्चा वो डिफरेंटली एबल होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी उसमें भी होते हैं, लेकिन डिफरेंटली एबल कैटेगरी जन्म से, लिंग से, इन सब चीजों से डिसाइड नहीं होती है। ये एज बैरियर भी नहीं होती है, किसी एज में भी किसी को भी हो सकती है। सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है। और रीजन तो हम सब जानते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से डिफरेंटली एबल लोग हो जाते हैं। हम इसको एक विजिबल कैटेगरी होती है जो आप देख पाते हो, लोकोमोटिव लाइक यू नो विजुअली चैलेंज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी नॉन विजुअल कैटेगरी होती है जिसमें हम देख नहीं पाते हैं, जैसे हीमोफीलिया हुआ, जैसे वो लोग जो सुन नहीं पाते, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, वो लोग जो डाउन सिंड्रोम है, ये कैटेगरी हमें दिखती नहीं है। तो हम इस तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं
0: जी। पहले गीत सुनेंगे और फिर ये सारी चर्चा हम आगे करेंगे। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में, यानी दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम जो हमारे देश में उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुमन बधाल और डॉक्टर स्मृति सिंह। तो हम बात कर रहे थे कि कौन डिसेबिलिटी कैटेगरी में फॉल करता है। डॉक्टर स्मृति ने हमें बताया कि बहुत तरीके से चैलेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो बाय बर्थ हो चाहे बाय एक्सीडेंट हो। तो डॉक्टर सुमन ये बताएं कि कौन कौन से डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या हर तरह की कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं या उसमें भी कोई लिमिटेशंस होती हैं, कोई कैटेगरीज होती हैं?
1: जी बिल्कुल, भारत सरकार ने गैजेट नोटिफाई में कर रखा है जिसमें 21 कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज रजिस्टर्ड हैं, दे कैन अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी। इनको जैसे कि मैडम ने भी बताया कि हीमोफीलिया, ब्लड डिसऑर्डर्स वाले हैं, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, देन लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टम को भी एक इंट्रोड्यूस किया गया है, देन हियरिंग है, लो विजन, ब्लाइंडनेस है और भी इस तरह करके तकरीबन स्पेशल लर्निंग डिसऑर्डर जो कि आजकल लेटली इंट्रोड्यूस किया गया है एंड दैट इज ऑल्सो सेरेब्रल पॉल्सी। इस तरह तकरीबन 21 कैटेगरीज हैं जो गैजेट में नोटिफाइड हैं, वो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
0: तो ये अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये पहचान लिया कि आप उस कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन इसके लिए क्या स्पेशल कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई प्रोसीजर है या कोई वेबसाइट है, कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया है या फिजिकली फॉर्म सबमिट करना होता है, ये थोड़ा सा बताएं।
1: जी बिल्कुल, इस समय हमारी भारत सरकार ने बिल्कुल विकलांगता वाले जो व्यक्ति हैं जिनको ये परेशानी है तो वो सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए, यूनिफाइड करने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट है swablamban.com करके, जिसमें ये लोग अपने एरिया के हिसाब से अप्लाई करेंगे तो जो नोटिफाइड हॉस्पिटल है उसमें 3 अस्पतालों की लिस्ट आ जाती है निकल के, जिसमें से चूज कर सकते हैं मरीज को जो पास पड़ता है या जो उनकी एरिया में आता है तो उसके हिसाब से वो हॉस्पिटल उनके प्रिंट होके आ जाता है उनके एप्लीकेशन पे। फिर फिजिकली जाके उनको उस अस्पताल में, उस रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या जो भी वहाँ पे काउंटर होता है उनसे जाके मिलना पड़ता है, फिर वो आगे का प्रोसेस उनको समझाते हैं और हर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है उस कंसर्न विभाग को वो उनको भेजते हैं।
0: जी, जो मेरा अगला प्रश्न था वो हमारे श्रोता ने यहाँ पूछ लिया है, उन्होंने हमें व्हाट्सएप किया है। लिखने वाले हैं अमृत, कहाँ से लिख रहे हैं ये नहीं लिखा है, पर उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर सुमन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं कि क्या आप प्रोवाइड करते हैं।
1: जी मैं बिल्कुल इनको बताना चाहूंगी, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए अमृतपाल जी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर हम कहें तो कई प्रकार के उपकरण अप्लायंसेस होते हैं, प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस। सफदरजंग विभाग में, पीएमआर विभाग में ऑर्थोसिस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट अभी हो गए हैं। प्रोस्थेसिस की कुछ नॉमिनल कॉस्ट है जो भारत सरकार के या जो ऑलरेडी नोटिफाइड लिस्ट है, कुछ एनजीओ या यूं कहें सीएसआर के अंतर्गत व्हीलचेयर भी जो डोनेशन बेसिस पे मरीजों को उपलब्ध करवाई जाती हैं, ये सारी सुविधाएं जो हैं सफदरजंग विभाग इनको सुचारू रूप से देता है।
0: जी जी, और सीएसआर की आपने बात की तो एक प्रश्न हमारे पास आया है, अनूप कुमार रांची से लिख रहे हैं कि सीएसआर जो है हर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इस पर आप क्या कहेंगे ये जानना चाहते हैं।
1: देखिए सीएसआर जो है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन इसमें व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन भी होता है। मैं कहूंगी छोटी एनजीओ है, जैसे अगर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूं, किसी को हेल्प करना चाहूं, अगर मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड है तो आई कैन ऑल्सो हेल्प। और सीएसआर जैसे कॉर्पोरेट को एक मस्ट है उनको ये करना एक्टिविटी, तो दे हैव टू डू बाय वेरियस चैनल्स।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर स्मृति यहाँ मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि कितना लगता है आपको कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
2: अभी के आजकल के जमाने में सीएसआर 2% ऑफ द कंपनी इनकम, जो जितनी भी बड़ी कंपनी है उनके अपने भी फाउंडेशंस हैं और वो कंपनी के थ्रू भी हर डिसेबल को, आप जैसे मैम ने फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बताया, विजुअली चैलेंज के लिए भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कंप्यूटर हुआ और सॉफ्टवेयर्स हुए, स्मार्ट

0: फोन हुआ। बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जिनसे हम मिलते हैं, और बहुत सारी कंपनीज इस तरीके की फैसिलिटी सीएसआर एक्टिविटी के अंदर देती हैं। तो आप जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन सारी सारी बड़ी कंपनी में आप देखोगे
1: सीएसआर की एक्टिविटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली डॉक्टर स्मृति। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, फोन लाइन पर हैं, आइए सुन लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, प्रश्न कर लें जी।
2: हाँ जी मैम, मैं मिथुन बात कर रहा हूँ गुजरात से।
1: हाँ जी,
2: मैं जानना चाहता हूँ कि नहीं सरकार की क्या क्या योजना रहेगी जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए। मैम
1: जी, अभी ये बात हमें डॉक्टर सुमन बता रही थी, डॉक्टर बताएं इनको फिर से कि क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, यही जानना चाहते हैं। जी जी
3: निखिल जी, देखिए सरकार की, क्योंकि वो पर्सन जिसको डिसेबिलिटी है उसको हम एज ए होलिस्टिक इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए उसको कंसिडर करना चाहिए। तो हमें पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि उसको चाहिए क्या, डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, उनकी ज़रूरतें कैसी हैं और किस अवस्था में जाके डिसेबिलिटी हुई है। उनकी एजुकेशनल नीड हो सकती हैं, उनकी वोकेशनल नीड हो सकती है, उनको एक यू कैन से कि एक डेडिकेटेड इनकम चाहिए अपने लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो वोकेशनल नीड हो सकती है, मॉनेटरी नीड्स हो सकती हैं। तो उस इंडिविजुअल को ऐसे होलिस्टिकली आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो डिसेबिलिटी कार्ड बनाने के बाद उसके माध्यम से ये सारी उनका बेनिफिट जो है उसको पर्सन को मिल सकता है।
1: जी धन्यवाद प्रश्न करने के लिए, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया। और इस तरह के हमारे श्रोता जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे रेडियो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सुमन हैं और डॉक्टर स्मृति हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हम जो आज बात कर रहे हैं दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनको दी जाती है सरकार द्वारा और एनजीओ द्वारा, वो भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे, हमें इंतजार है आपके प्रश्नों का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों के बारे में, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैम,
1: कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
2: मैं अमृतपाल सिंह बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान से।
1: जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं आज इस विषय पर?
2: हाँ मैम, जैसे मेरे एक नॉन है, उनकी एक आंख से बिल्कुल नहीं उन्हें दिखाई देता, तो इसके लिए सर्टिफिकेट के लिए क्या प्रोसीजर रहता है?
1: जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है डॉक्टर सुमैन का, कि किस तरह से ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है, बताएं।
3: धन्यवाद अमृतपाल जी सवाल पूछने के लिए। आपने जैसे बताया कि वो विजुअली चैलेंज है या उनका
1: एक आंख से
3: उनका दिक्कत है,
2: तो आंख से जीरो है।
3: हाँ, तो इसका एक पोर्टल है जो सरकार ने ये सुविधा दी है, swavalamban.com करके, उसमें वहाँ उनको आधार बेस्ड ये सिस्टम है, ताकि जितने भी डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक यूनिफाइड डेटा सरकार को चाहिए, जिससे कि सारी सुविधाएं उनको बेनिफिट जो है इस UDID कार्ड के माध्यम से उनको दी जाए। तो पहले इनको रजिस्टर करना पड़ेगा swavalamban.com पे, उसके बाद इनके आधार बेस के हिसाब से इनका जो एरिया है उसके आसपास इनको 3 अस्पताल प्रायोरिटी के हिसाब से 1, 2, 3 करके इनके लिस्ट में आ जाएगा। तो जो भी अस्पताल इनको डेजिग्नेट किया गया है उस पोर्टल के माध्यम से, वो वहां जाके विजिट करें, कोऑर्डिनेट करें, और वहां उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा।
1: तो बिल्कुल धन्यवाद, आपने प्रश्न किया। और आप जैसे और बहुत सारे श्रोता होंगे जो इस बारे में जानना चाहते होंगे, आपके माध्यम से, आपके प्रश्न के माध्यम से उनको भी जवाब मिल गया। हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है, नरेंद्र शर्मा जी हैं किस्तवाड़ जम्मू कश्मीर से, इन्होंने हमें अपने बेटे के बारे में लिखा है कि मेरा पुत्र है जिसकी उम्र 14 साल है, और अभी मेरा बेटा सामान्य स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययनरत है, और वो जन्म से उसको हियरिंग वो इम्पेयर्ड है, 90% हियरिंग लॉस है। तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या उसको सामान्य स्कूल में पढ़ने दिया जाए या उसको कोई स्पेशल स्कूल में डाला जाए, क्योंकि इन्होंने काफी बड़ा लिखा है, पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, समय की थोड़ी कमी है। ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह की क्या इनको पढ़ाई कराई जा सकती है कि जिससे वो पैरों पर खड़ा हो सके, और उनको आगे किसी और स्कूल में डाला जाए जिससे कि उनकी आगे की जो जर्नी हो पढ़ाई की भी और जॉब की, वो इजी हो सके। इस तरह के कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या डॉक्टर स्मृति?
4: या सबसे पहले नरेंद्र जी, कोई घबराने की बात नहीं है, और आपका बच्चा अभी सामान्य स्कूल में पढ़ रहा है, और मैं यही आपसे आशा रखूंगी कि उसकी आप सामान्य स्कूल में ही पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। थोड़े चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए आप साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर या उनके जो विशेषज्ञ होते हैं, आपके जम्मू एरिया में भी हैं, काफी लोग हैं, और वो हेल्प भी करते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात है, आइडेंटिफाइड जॉब है जो विजुअली चैलेंज, हेयरिंग इम्पेयर्ड या लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ लोग कर सकते हैं, तो उस तरीके के जॉब सरकार ने बताए हुए हैं, और उनमें बहुत सारे जॉब्स हैं जिनमें HH के लिए सीट रिजर्व रहता है, तो उसमें आपका बच्चा सामान्य लोगों की तरह जॉब भी कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, और आप सामान्य स्कूल में ही अपने बच्चे की पढ़ाई जारी रखें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी।
1: चलिए, बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न किया है नरेश जी, और आपको जवाब भी मिल गया डॉक्टर स्मृति की तरफ से। और हमारे एक और

0: श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो
1: हेलो।
0: जी, आप अपना नाम बताएं और कहां से बोल
1: मैडम
0: रहे हैं।
1: वीपी सिंह बोल रहा हूँ, साउथ दिल्ली से।
0: जी वीपी सिंह जी, आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे आज इस
1: ये
0: विषय
1: आप
0: पर।
1: दो एक्सपर्ट हैं, दोनों से एक एक सवाल है।
0: हाँ जी बताएं।
1: जो सफदरजंग हॉस्पिटल में है जो मैडम है, उनसे सवाल ये है मेरा कि जो पहले से ही विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है और मेडिकल कार्ड भी है उसके पास, कंसेशन कार्ड होते हैं
0: जी।
1: रेलवे में फैसिलिटीज को अवेल करते हैं, जो भी कार्ड बना रही है जो टिकट बुकिंग करने के लिए, वो यूआईडी कार्ड होना जरूरी है, तो कहाँ से बन सकता है ये।
0: अभी मैडम ने बताया था यूआईडी कार्ड कैसे बनाया जा सकता है, एक बार शॉर्ट में फिर से बता दें। आप शायद लेट जुड़े होंगे कार्यक्रम में।
2: यूडीआईडी कार्ड के लिए आपको swablamban.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। एक आधार बेस्ड सिस्टम है जिसमें आपका आधार से और आपके फोन से लिंक्ड है। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन जो जानकारी है आपके फोन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इसमें जब आप रजिस्टर करेंगे आपको 3 अस्पताल की लिस्ट दी जाएगी, तो जिसमें से जो भी अस्पताल आपको बेस्ट सुटेबल लगता है आप वहां विजिट करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
0: चलिए धन्यवाद वीपी सिंह जी, आपका प्रश्न हम तक पूरा नहीं पहुंचा लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया और एक और श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो जी।
3: मैं 80 साल उम्र है मेरी साहब
0: जी, नाम बता दें।
3: जगजीत सिंह है मेरा नाम।
0: अच्छा जी जगजीत सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: 218 में मेरी आंखों का इलाज हुआ था। मेरी रोशनी उस टाइम 20% थी, अब बिल्कुल कम हो गई है रोशनी। कोई हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से।
4: हाँ जी सर, 80 साल के लोगों को गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, आप जिस एरिया में लोकेटेड हैं उसके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, जो स्पेशल स्कूल के हैं या नॉन गवर्नमेंट एनजीओस के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, क्योंकि इट्स वेरी मतलब एज रिलेटेड डिसेबिलिटी तो आती है। अब जो 75 साल तक सब साल तक जी रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे आंखों से, अब आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, एज सिंपल एज दिस, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होती है। तो उनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम रन किया जाता है और उनको सुविधा दी जाती है जो मुफ्त में किया जाता है, तो आप जैसे लोगों के लिए भी सुविधा है।
0: इसको कैसे किया जा सकता है अवेल?
4: इसको अवेल करने के लिए आप जिस एरिया में हैं उस एरिया के जो भी आपके आप पता करो कि उनके आपके एरिया में गवर्नमेंट या एनजीओ से रिलेटेड कौन से स्पेशल स्कूल्स हैं, कौन से स्पेशल सेंटर्स हैं, वहां पर आप जाओगे वो सब सुविधाएं देते हैं। बहुत बार बहुत सारे एनजीओस को आप कांटेक्ट करोगे पर्सनली भी जो आपके स्टेट में होंगे, तो वो आपके घरों पर भी आके आपको ये सुविधा प्रदान करते हैं।
0: जी जी, तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सिर्फ थोड़ा सा पता करना है, आपको सही जगह पर पहुंचना है। हमारे पास ये व्हाट्सएप मैसेज आया है, पवन ने लिखा है उत्तराखंड से कि CWSN जो बच्चे हैं क्या उनके लिए वर्तमान में कोई एजुकेशन फैसिलिटी भी राज्य या केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है। डॉक्टर सुमन आपसे जाना चाहेंगे।
2: जी बिल्कुल, जैसे कि इनका सवाल है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए बहुत सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखी हैं। तो हालांकि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है ये बहुत बाद में गैजेट में इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इसमें एक समग्र शिक्षा अभियान है जिसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं इन बच्चों के लिए दी गई हैं। NCERT का जो करिकुलम है उसमें भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए गए हैं इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए। इंक्लूसिव क्लासरूम्स बनाए गए हैं, स्पेशल एजुकेटर्स नॉर्मल क्लासरूम में ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि बच्चों को एक नॉर्मल क्लासरूम का उनके नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के हिसाब से उनको एक आइसोलेटेड फीलिंग ना आए। इसके अलावा एक PM विद्या पोर्टल है, वो भी इन बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
0: जी डॉक्टर स्मृति, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपने शुरू में बताया कार्यक्रम के कि आप एक केयर गिवर भी हैं, तो किस तरह से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की जो बात हो रही है पवन जी पूछ रहे हैं, तो किन किन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है?
4: हर डिसेबिलिटी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। मैं अगर सबसे पहले तो ये हेल्थ प्रोग्राम है, तो मैं एजुकेशन को शॉर्ट में करके और हेल्थ पर ज्यादा जाऊंगी। ये एजुकेशन में ट्रांसपोर्ट से लेके और बहुत सारे रूल्स हैं जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के तरफ से, और बहुत सारे सरकारी स्कूल में फॉलो भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पर किसी भी वजह से अवेयरनेस की वजह से एक्ट नया है, 2016 एक्ट आया, फिर 2017 एक्ट आया लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, तो बहुत सारी चीजों की वजह से अभी चीजें ना बन रही हैं, एडजस्टमेंट में हैं, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में। तो सबसे पहले तो FM रेनबो को बहुत सारा थैंक यू कि अवेयरनेस इस बारे में आ रहा है, हम इस बारे में

0: बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बारे में बहुत कम बात करते
1: जी
0: हैं
1: जी जी
0: और उसमें इस वजह से काफी सारी प्रॉब्लम होती है क्लास में। बच्चों को कहने को हम कह देते हैं कि समग्र शिक्षा होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, बहुत बार बच्चा क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाता है तो कहीं का नहीं रह जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं है तो स्कूल रोज जाने की प्रॉब्लम है, कैसे जाएगा बच्चा, ये वाली सारी प्रॉब्लम है। तो अब जैसे सीएनजी लगा हुआ है पीछे, तो व्हीलचेयर नहीं जा सकती है बच्चे की, बहुत बार बहुत तरीके की प्रॉब्लम है
1: जी, बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की भी बात आपने बताई। और एक श्रोता जरूर वेट कर रहे हैं, तो हम पहले उनको ले लेते हैं, इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। हेलो
2: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जय किशन अग्रवाल, साइकिल मार्केट चैनल से बोल रहा
1: हूं। जी अग्रवाल जी बताएं,
2: आपको नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
2: मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो कॉलेजेस हमारे यहाँ दिल्ली में हैं और बाहर के जो विकलांग लोग हैं बच्चे आके पढ़ते हैं, और जो दिल्ली के भी जो विकलांग दूर दूर रहते हैं, क्या उनके लिए कॉलेज में हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, और अगर करते हैं तो किस आधार पे करते हैं?
1: कॉलेजेस की बात की उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या हॉस्टल की जब बात करते हैं तो हॉस्टल में इनके लिए कुछ अलग से कोटा होता है या कुछ अलग से ध्यान रखा जाता है? डॉक्टर सुमन, डॉक्टर स्मृति बता रहे
0: हैं। यस, हर कॉलेज में 4% सीट डिसेबल लोगों के लिए रिजर्व की गई है, 5% रिजर्वेशन है डिसेबल लोगों का। उसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में हॉस्टल हैं, हॉस्टल की प्रायोरिटी देखो, और उसमें जो 4% या 5% सीट रहता है तो जरूरी, तो हॉस्टल की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है? अब होता ये है कि कुछ बच्चे फिर भी घर के पास के होते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, तो बहुत सारे हॉस्टल्स में अब क्या करें उसके लिए, तो जो बच्चे आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं और थोड़ा सा मार्क्स बेसिस ले लेते हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, और जो बच्चे दिल्ली के होते हैं उनकी प्रायोरिटी बाद में होती है। बट ऐसा नहीं है कि बच्चों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो एनजीओस चला रहे हैं जिनमें इन बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है। परेशानी तो है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारी सीट सारी चीजें एक तरीके से हो जाती हैं कि सबको हॉस्टल मिल जाता है, सब कुछ हेवन नहीं है, लाइफ इज नेवर हेवन, बट
1: प्रयास तो करते रहना पड़ता है।
0: बट जी ऐसा नहीं है कि लाइफ इज हेल आल्सो, लाइफ इज ब्यूटीफुल।
1: यस, लाइफ इज ब्यूटीफुल। एंड अभी हमारे एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो
3: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार,
3: नमस्कार
1: नमस्कार जी, हमारे रेडियो डॉक्टर्स आपको सुन रहे हैं, आप अपना नाम बता दीजिए।
3: मैम मैं दिल्ली से जाहिद बात कर रहा हूँ, दिल्ली से।
1: जी जी जाहिद जी बताएं।
3: मैम से मेरे सवाल है कि मैं जो है 2001 में सर्टिफिकेट बना था, मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट 2001 में आरपी पेशेंट हूँ मैं, तो 75% का बना हुआ था। अब जो बिल्कुल आई साइड जो है 1-2% ही रोशनी रह गई है, तो क्या ये दूसरा बन जाएगा नया? और दूसरा सवाल ये है मैम कि इसके मुझे फैसिलिटीज क्या मिलेगी, वो बेनिफिट तो मुझे मिलता है जो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, इसके अलावा जैसे मैं 32 साल से रेंट पे रहता हूँ तो कुछ इसका कोई ऐसा है जैसे मकान मिल जाए कोई किसी लोन पे किसी पे, या कुछ आमदनी का सिलसिला बन जाए, जैसे कुछ हमें काम मिल जाए, कोई एजेंसी है या कोई कारोबार या कोई भी चीज इस तरह की जो हमारी इनकम बढ़ जाए कुछ।
1: इन्होंने जो बताया कि 75% इनकी डिसेबिलिटी थी और अब ज्यादा बढ़ गई है, तो डॉक्टर सुमन क्या दोबारा से ये रिवाइज किया जा सकता है?
4: जी बिल्कुल, ये दोबारा अस्पताल में जाके अपना सर्टिफिकेट रीअप्लाई करके और दिखा सकते हैं, अगर वो डिसेबिलिटी अगर वाकई
1: मेडिकल होता होगा इसके लिए।
4: बिल्कुल, दोबारा एक मेडिकल बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाता है और देखा जाता है कि अगर बढ़ गई है तो उसको जरूर रिवाइज किया जाता है।
1: और जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, अभी डॉक्टर स्मृति ने भी बताया बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और जैसे अभी हमारे जो श्रोता है उन्होंने भी बोला कि क्या हमें कुछ काम मिल सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बहुत जरूरी है, और एक स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है छात्रवृत्ति मिल सकती है क्या, इस तरह के प्रश्न आते हैं। स्किल्ड ट्रेनिंग या एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ हेल्प मिल सकती है, तो जब हम पुनर्वास पर बात करते हैं तो ये सारे बिंदु भी जरूर छूना जरूरी है। तो मुझे बताएं कि डॉक्टर स्मृति आपसे पूछूंगी कि इस तरह की जो सुविधाएं मिल सकती हैं या मिल रही हैं क्या सरकार की तरफ से?
0: पहले मैं उन भाई साहब को जवाब देना चाहूंगी, हमें डीडीए की स्कीम्स में रिजर्वेशन मिलता है, पीएम आवास योजना में भी हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, और बहुत बार डिसेबिलिटी ग्राउंड पर

0: अगर आपकी इनकम उसको मैच करती है तो घर फ्री के भी मिलते हैं, और आप उसमें बैंक्स के थ्रू, पीएम आवास स्कीम के थ्रू पता करके उसको देख सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपको देखना है कि आपकी जो जॉब है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग कुछ स्वयं सहायता ग्रुप भी हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब भी हैं, बहुत सारे तरीके की चीज़ें हैं। आपको थोड़ा सा अपने एरिया में, देखो हम डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है, मैं भी एक वुमन हूँ, मैंने भी एक्सप्लोर की है ज़िंदगी, और उस तरीके से आप थोड़ा सा अपने घर के बाहर निकलिए। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपना हाथ फैलाए, अपनी बाहें पसारे, आपका स्वागत करने के लिए, आपको समायोजित करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं।
1: जी, बहुत बहुत पॉजिटिव बातें डॉक्टर स्मृति यहाँ बता रही हैं, डॉक्टर सुमन बता रही हैं, और इस तरह से हमें लगता है कि अगर हम इन सब चीज़ों का, हमें सही जानकारी मिले तो हम ये सब चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। और अभी हम जो बात कर रहे थे प्रशिक्षण के बारे में, अभी डॉक्टर सुमन से मैं फिर से पूछूंगी, लेकिन इस बीच में एक जो मैसेज आया है उसको मैं लेना चाहूंगी। उत्तराखंड कोटद्वार से नरदेव सिंह चौहान जी ने लिखा है कि डॉक्टर साहब, शालिनी मैम आपको नमस्कार, और दिव्यांग समाज के लिए उनके प्रशिक्षण, उन्हें सक्षम बनाने के लिए कौन सी योजना है, इसी बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी। तो ये प्रश्न भी आ गया हमारे श्रोता का।
2: जी बिल्कुल, धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। देखिए, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है और आपका एजुकेशन लेवल क्या है, उसके बाद आपकी हॉबीज क्या हैं। क्योंकि अगर एक जरिया बंद हो जाता है, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एग्जांपल दूं, अगर कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और उनकी टांग चली गई है, तो अब उसको देखना पड़ेगा एजुकेशन लेवल क्या है या उनकी हॉबी क्या है, उसको हम वोकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक पीएम दक्ष DEPWD पोर्टल है, जिसमें दो बेसिकली डोमेन है। एक जो डोमेन है वो स्किल ट्रेनिंग के लिए है, दूसरा जो है दिव्यांग रोजगार सेतु है, जिसमें आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, PWD जो पर्सन है, वो किसी भी जॉब देने वाली संस्था के साथ जुड़ सकता है, अस्पताल में जाके भी वोकेशनल रिहैबिलिटेशन करवा सकता है, या वोकेशनल रिहैबिलिटेशन स्कूल्स हैं जो बेसिकली उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके दोबारा सक्षम बना के और कम्युनिटी में उनको वापस री इंटीग्रेट करती हैं।
1: तो इस तरह के पोर्टल पे हम इंफॉर्मेशन होंगी,
2: बिल्कुल
1: उस इंफॉर्मेशन से आप उस चीज को अवेल कर सकते हैं। और एक मैसेज हमारे तक पहुंचा है, लिखने वाली है जानवी भारती, इन्होंने लिखा है मेरठ में रहती हैं, रेडियो डॉक्टर रोज ये सुनती हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरी विकलांगता है आंखों की और मुझे 40% विकलांगता है, क्या कोई स्मार्टफोन या फोन की सुविधा होती है जो हमें मिल सके, जिससे कि हमें हेल्प मिल सके काम करने में और इन सब चीजों के लिए। तो इस तरह की कोई फैसिलिटी है डॉक्टर स्मृति?
0: यस, इस तरीके की फैसिलिटी है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय हमेशा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हमेशा लेके आते हैं स्कीम्स, और उसमें आपको फॉर्म भर के अपने डिसेबिलिटी UDID के साथ अप्लाई करना पड़ेगा और वो आपको फोन देंगे, मिलता है, सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं आजकल।
1: तो सुविधाएं हैं जैसा डॉक्टर स्मृति बता रही हैं, लेकिन आपको सही जगह पर पहुंचना है। यहाँ पर एक गाना सुनेंगे, क्या कहेंगी डॉक्टर स्मृति? एक गीत आपकी पसंद का मैंने निकाला है, और मुझे लगता है डॉक्टर सुमन ने भी मुझे बताया कि ये गीत उन्हें भी बहुत पसंद है, मोनाली ठाकुर की आवाज में मोह मोह के धागे। तो ये गीत मेरा भी बहुत पसंदीदा गीत है, तो हम तीनों मिलकर पहले एक गीत सुनते हैं, लौटते हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं?
2: पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी तो भाई नमस्कार
1: जी। नमस्कार राजेंद्र जी।
2: मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली
1: जी से। जी आप अपना प्रश्न करें।
2: और दोनों विशेषज्ञ साहिबाओं को भी नमस्कार
1: जी। नमस्कार सबकी तरफ से। हाँ जी बताएं, क्या आप पूछना चाहते हैं?
2: मेरा पहला सवाल ये कि देखिए दिल्ली में जो है, दिल्ली में बसें चलती हैं और दिल्ली में विकलांगों के लिए बसों में अटेंडेंस भी अलाउ है और जो है पास भी अलाउ है, पर बसें पूरे हिंदुस्तान में चलती है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल, क्या ट्रेन में और हवाई जहाज में और ये जो मेट्रो चलनी शुरू हुई है, क्या इनमें भी अटेंडेंट और पास की सुविधाएं गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है क्या, इसके बारे में बताया कर चुकी है? और तीसरा सवाल मेरा है कि जो लोग भाई बस हैंडीकैप होते हैं, कुछ लोग बाद में होते हैं, तो जैसे पहले प्रोसीजर था कि आप उसके लिए आप जाके अस्पताल में हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाइए, तो तमाम उम्र

0: काम करता था, तो अब क्या उसको रिन्यू करना पड़ता है चार पांच साल में, या फिर जो है वही कंटिन्यू पूरी लाइफ चलता है? ये कुछ मेरे सवाल है, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी प्रश्न करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि जैसे इन्होंने भी कहा कि क्या फैसिलिटीज दी जाती है दिव्यांगों को, और आप कुछ कहना चाह रही हैं डॉक्टर स्मृति?
2: या मैं ये कहना चाह रही थी कि सुविधा तो नहीं है, लेकिन हर मेट्रो स्टेशन पर जब आप घुसते हो तो वहां पर आप बता देते हो कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो मेट्रो का स्टाफ स्वयं आपको असिस्ट करता है। आपके जाने से पहले मेट्रो स्टेशन का स्टाफ खड़ा रहेगा आपको रिसीव करने के लिए, और आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं उस जगह की सवारी पर आपको बैठा के छोड़ेगा। तो इस तरीके की सुविधा तो अवेलेबल है, लेकिन ये वाली तो अटेंडेंट वाली सुविधा नहीं अवेलेबल है। और दूसरी बात, ये जो रिन्यू कराने का कह रहे थे मैम, ज्यादा अच्छा बता पाएंगी, लेकिन ये डिसेबिलिटी के पास इसमें जैसे टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आपके सर्टिफिकेट पर है तो उसको रिन्यू तो नहीं कराना पड़ता है।
1: जी डॉक्टर सुमन, आप बताएं, जैसे ये बोल रहे थे क्या अगर एक बार बन जाता है तो उसको रिन्यू भी कराना होता है क्या?
3: जैसे कि मैडम ने बताया, अगर लिमिटेड वैलिडिटी या टेम्पररी सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कराना पड़ता है। उसकी अवधि उस कार्ड पे मेंशन होती है कितने समय के लिए कार्ड वैध है या वैलिड है। अगर परमानेंट है तो उसको रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं होती है।
1: जी जी जी, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन कुछ और बहुत जरूरी बातें हैं जो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं तक पहुंचे कि जब हम दिव्यांग की बात करते हैं उनकी कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के लिए हम बात कर लेते हैं कि वो हॉस्पिटल में अगर वो पहुंचते हैं तो किस तरह की सुविधा उनको दी जाती है।
3: जी बिल्कुल, अभी इसके बारे में जागरूकता काफी हद तक आ चुकी है, और भी आगे इसकी आवश्यकता है कि जागरूकता बढ़े और ये प्रोग्राम जैसा कि इस तरह की चीजों की बिल्कुल बेहद आवश्यकता है। अस्पताल में मैं आपको बताना चाहूंगी, दिव्यांगजनों के लिए एक अलग डेजिग्नेटेड काउंटर होता है, जब वो घुसते हैं उनके लिए पार्किंग होती है, सबसे पहले गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग होती है, असिस्टेंस होती है। मैं सरकारी अस्पताल की बात कर रही हूँ, एक डिसेबिलिटी पार्किंग है, देन उनका एक अलग से काउंटर होता है, उनको बकायदा मे आई हेल्प यू से काउंटर से उनको डेजिग्नेट किया जाता है कि उनको किस विभाग में जाके दिखाना है। सुगे में लिफ्ट होती हैं आजकल, विजुअली चैलेंज के लिए, हियरिंग वालों के लिए हर तरह की लिफ्ट जो है हर फ्लोर पे उपलब्ध हैं ताकि वे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें।
1: जी, तो ये सुविधाओं की हमने बात की, पर यहाँ ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर स्मृति हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्मृति, ये बताएं किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करती हैं?
2: या एक तो मैं केयर गिवर भी हूँ, तो हॉस्पिटल आना जाना, क्योंकि मेरी बेटी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से अंडर ट्रीटमेंट है वो, तो हॉस्पिटल आना जाना और बहुत सारी चीजों में, क्योंकि बहुत क्राउडेड होते हैं हॉस्पिटल्स, और पार्किंग तो बहुत दूर की बात आती है, तो उसमें आने में पहले प्रॉब्लम होती है। फिर मेडिसिंस जो होते हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों का धन्यवाद, जिन्होंने QR कोड मेडिसिंस पर बहुत जगह पर अभी रिकॉग्नाइज कर लिया 300 मेडिसिंस पर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और सारे मेडिसिंस पर भी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो मेडिसिन लेना भी अपने आप में एक डिसेबल के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन कई तरीके एक ही साइज की होती है, उसको पहचानना और उसको सब कुछ करना बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब QR कोड या ऐसे एक्सेसिबल मेडिसिंस और या हेल्थ केयर के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं तो बहुत ही सुविधाएं हो जाती हैं। बहुत बार डॉक्टर्स एक्सरे या कोई भी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, तो टाइम का भी ये रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, लेकिन अवेयरनेस आ रही है, इसलिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड डॉक्टर्स को भी बताना जरूरी है कि कैसे, या हेल्थ कर्मी को बताना जरूरी है, नर्स को, वार्ड बॉय को, कि एक डिसेबल को आप कैसे हेल्प करोगे, उसको किस तरह की जरूरत है, तो उससे ज्यादा सुविधाएं आएंगी हॉस्पिटल में। और सरकार इस तरफ अग्रसर है, लेकिन मुझे पता है कि हम लोगों की ऐसे इनिशिएटिव के बाद सरकार और भी ज्यादा काम करेगी और सारी चीजों को हमारे हेल्थ केयर बहुत सारी पॉलिसीज भी बनी है, अभी काफी अवेयरनेस आई है, लेकिन अभी काफी कुछ करना बाकी है, स्पेशली डिसेबल विथ विमेन विथ डिसेबिलिटी को लेके बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो सोचने में भी, अगर मैं बोलूंगी तो पूरा प्रोग्राम चला जाएगा।
1: जी, जी, जी। हम समस्याओं पर बात आज कर रहे हैं पर समाधान पर भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुमन, इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे?
3: जी बिल्कुल, मैं इनको कहना चाहूंगी कि इसके अलावा जब हम अस्पताल में जाते हैं, जैसे अस्पताल की मैं बात करूं तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये सारी इन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू।
1: जी, तो बहुत सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें लगता है

0: हमारे श्रोताओं तो पहुंची होगी। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली डॉक्टर स्मिति की, बहुत सारी जो QR कोड से जो ये दवाइयां परचेज की जा सकती हैं, इस पर कार्य चल रहा है, उस तरह का कार्य और आगे बढ़ता रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है, यश है, न्यू दिल्ली में रहते हैं, ये बोल रहे हैं कि आई वॉन्टेड टू आस्क व्हाट कैन अ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स डू टू रिड्यूस द स्टिग्मा एंड प्रमोट इंक्लूसिवनेस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी हम चाहते हैं जहां पर सबको समान अधिकार हूं, तो ये अधिकार और सब कुछ सारी सुविधाएं सबको मिल सके, इसके लिए क्या बहुत जरूरी है? क्या हमें इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करना चाहिए या कलेक्टिव वर्क करना चाहिए? बहुत कम समय है पर मैं दोनों आप दोनों से थोड़ा थोड़ा सा इस बारे में चाहूंगी।
1: या सबसे पहले तो इस तरीके की स्टिग्मा से लड़ने के लिए जो आज का इनिशिएटिव है वो शालिनी मैम को बहुत सारा धन्यवाद। इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए और सबसे बड़ी बात है हम सबको डिसेबल्स को इक्वल समझना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी को देखें, डिसेबिलिटी को बाद में देखें तो स्टिग्मा अपने आप चला जाएगा। उनसे फ्रेंडशिप करें, उनकी जिंदगी में समझे, ये सोसाइटी के लिए जरूरी है कि उनके अलग से कॉलोनी ना हो, अलग से घर ना हो, अलग से वो एक दूसरे के साथ न रहें। हमें कोशिश करना चाहिए, हम सबको कोशिश करना चाहिए, हम डिसेबल भाई बहनों को भी कोशिश करना चाहिए कि हम मोर ऑफ सबके साथ रहने की कोशिश करें और उनको अपने बारे में खुल के बताएं, खुल के अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और खुल के उसके समाधान के बारे में बताएं और हंसे खुशे से रहें। डिसेबिलिटी सबके पास है, किसी ने किसी तरीके से उसको बस केटर करने की जरूरत।
0: बहुत अच्छी बात बोली। और डॉक्टर सुमन आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स?
2: बिल्कुल, मेरे भी यही है कि हमें डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, सोशल इंक्लूजन पे हमें ध्यान देना चाहिए, बेबी इट्स इकोनॉमिक और इन डे टू डे लाइफ। अगर हम उनको अपने से अलग नहीं समझेंगे दे विल बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी, तो स्टिग्मा अपने आप चले जाएगा, दे विल नॉट कंसिडर देम स्पेशल, यू इंक्लूड देम इन सोसाइटी एंड वेलकम देम, क्योंकि देखिए सबकी भागीदारी से ही समग्र प्रगति संभव है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली और अब इसी तरह से हम मिलजुल कर रहें और कार्यक्रम आप सुनते रहिए और ये कार्यक्रम आपको बहुत सारी जानकारी अब तक पहुंचाएगा। और आज का जो ये कार्यक्रम था वो विशेष हमने केंद्रित किया था दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके ऊपर, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स पर। और हमारे साथ हमारी रेडियो डॉक्टर्स रही डॉक्टर सुमन बादाल, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ PMR VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर स्मृति सिंह हमारे साथ थी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैत्री कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों समय निकाल कर यहाँ आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
2: धन्यवाद।
0: और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का समय आ गया है और आप अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को दीजिए इजाजत, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: आकाशवाणी।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंडी पर रात 9 बजे।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी

0: बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: घर से, ये जल्दी निकल जाती है घर से, देर से वापस आती है, पत्नी मुझे सताती है।
1: पत्नी सताती है, आए पतीज, मैनू मेरी पत्नी बहुत सताउंदी है, अज ते मेरा दिन है।
2: ओ चाचा, की हो गया, क्यों रोई जाना? प्रोग्राम दी अजे शुरुआत होई है, आपां लोकां नूं हसाउंदे आ ते तू रोण लग पिया।
1: ओ पतीज, तैनूं नहीं पता अज किहड़ा दिन है?
2: नहीं चाचा, मैनू पता है अज किहड़ा दिन है, लेकिन तैनूं की हो गया?
1: पतीज पहला दस, अज किन्नी तरीक है?
2: चाचा, अज 27 तरीक है।
1: इतना नहीं भतीज, पूरा दस किन्नी तरीक है, नाल महीना केड़ा है?
2: चाचा, अज 27 जून है।
1: 27 जून पता केड़ी तरीक हुंदी है?
2: केड़ी तरीक हुंदी है चाचा?
1: वो हुंदी है सताए हुए पतियां दी तरीक। सो अज सताए हुए पतियां दी तरीक है, सताए हुए पतियां दा दिन है, यानी कि अज हसबेंड डे है। सो अज पतियां दा दिन है, ते अज मेरा आज दा दुख बाहर आ गया। हाँ भतीज, तू इतना दा सैड म्यूजिक लगा के मैनू और दुखी कर दे।
2: ओ नहीं चाचा, इदा दी कोई गल नहीं हैगी, तू टेंशन ना लै, बहुत सारे दोस्तों ने अपन फोन करना है, अपनी फरमाइश भी पूरी करवानी है। चल इदा करते हैं, जिहड़े दोस्त सानू अज कॉल करनगे ना, वह आपां तेरे नाल ही गल करवानी है, तैनू थोड़ा जा हौसला देणगे, ते नाले मैं भी देख लांगा कि अज मेरे फत्तू चाचे दे नाल दीआं होर किन्नियां कुछ सताईआं होईआं जूनां इस धरती ते तुरियां फिरदियां ने। ते दोस्तों, जेकर तुसीं कॉल करनी है, नंबर है जी 0181-23-42-174, यानी 0181-23-42-174। इस नंबर ते तुसीं कॉल करो, उन्नी देर तक चाची जिहड़ी मेरे चाचे नूं सताउंदी है, वो चाचा जिहड़ा गीत हुणे सुन लिया सी ना, वह आपां उहनां नूं सुना दिंदे आ। उन्नी देर तक इंतजार करदे आ साडे अगले कॉलर दोस्त दी।
0: पत्नी, हां हां।

घर से, ये जल्दी निकल जाती है घर से, देर से वापस आती है, पत्नी मुझे सताती है।

0: दोस्तों प्रोग्राम चल रहा जी। हैलो जलंधर, पत्नी मुझे सताती है। मेरे चाचा जी डिमांड के उत्ते गाना लगाया सी। चाचा जी इस वेले नाल बैठे रो रहे ने। फत्तू चाचा जी कह रहे ने कि अज सताई हुई जूना का दिन है, तो कहिंदे अज सताईयां हुईयां जूना साढ़े कोल आउणगियां प्रोग्राम हैलो जलंधर च, तो अपने अपने दुखड़े सुनाउणगियां। सो पहली कि सताई हुई जून साढ़े कोल पहुंची है जी, आओ पहले उन्होंने नाल गल कर लैंदे हां। हैलो
1: हैलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम हैलो जलंधर च।
1: शुक्रिया जी।
0: कौन जनाब गल कर रहे ने?
1: मैं संदीप सिंह बोल रहा अमृतसर।
0: संदीप जी की हाल चाल ने? किन्नी क सताई हुई जून हो तुसी?
1: हाँ जी,
0: मैं कहा किन्नी क सताई हुई जून हो तुसी?
1: बहुत है फिर नहीं सताई हुई, क्योंकि हफ्ता हो गया गई हुई पेके वाइफ।
0: अच्छा, ताड़े ते मतलब चंगे दिन चलते पे हैं।
1: हाँ जी।
0: अच्छा, तो जो हूँ एक हफ्ते बाद उन्होंने वापस आ जाना तो फिर ताड़े वही दिन शुरू हो जाने? अमृतसर तो संदीप जी कहते कि मैं गल करदा। हेलो
1: चाचा जी।
0: हां जी, कौन है?
1: मैं संदीप सिंह बोल रहा।
0: संदीप तू भी भरावा सताई हुई जून ही लगता मेनू। तेरी भी आवाज नहीं निकलती, मेनू पता लग गया तेरी आवाज किने दबी है। हां, मेनू पता तेरे गल दे उत्ते अंगूठा किने रखिया होया। चाचे दा बुरा हाल, चाची किते नहीं जांदी। आ सवेरा हुंदे सार ही मैनू कहिंदी कहिंदी जी अज किन्नी तरीक है। आ मैं खुश हो के कहता, मैं क्या भगवाने 27 जून है, ते मोरों हसण लग पई कहिंदी अज तुहाडा दिन है 27 हुई जून दा। हौसला नहीं हारीदा हुंदा तू, ते जमा तू ते सानू हौसला देना चाहिए। अले संदीप जी तुही भी हौसला नहीं दिता उन्हां नू, तुही भी गल्लां सुन बह गए।
1: हौसला ही है
0: सारिआं दे नाल, इक्को जिहे ना आपां इस वेले। अज साडा दिन है, सताईआं होईआं
1: सारे, इक्को जिहे
0: जी। चलो खैर कोई गल नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं।

0: आसमान में काली घटा कब छाएगी, आसमान में काली घटा कब छाएगी, लोगों की बीवियां मायके चली गई मेरी वाली, आओ मेरी वाली जो है ना वो कब जाएगी।
1: ओ चाचा कुछ नहीं हुंदा, चाची नूं भी कह दिंदे आ वी मायके चक्कर लाया पेके जाया थोड़ी देर दे लई घूम फेरा, तू ज्यादा उदास ना हो, इनियां सैड सैड शायरियां ना कर। आ मैं अगले कॉलर दोस्त नूं बुला लिया, वो समझाउंदे ने तैनूं, ठीक है। हैलो
2: हैलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, नमस्कार प्रवीण जी, की हाल चाल ने?
2: बस बिल्कुल वधिया जी।
1: वधिया, चलो ठीक है जी, बहुत वधिया। मैं कहा चाचा जी ने यार थोड़ी जी गल करियो, समझाया उन्हां नूं कि कुछ नहीं होया है।
2: हां जी।
0: हैलो
3: हैलो चाचा जी। की करा, मेरी ते 27 जून होगी पूरी दी पूरी। शादी कर लियो फिर।
0: की कर लियो?
3: वो तो शादी दोबारा कर लो।
0: हुण उमर है, हुण ते अगे जान दी उमर, हुण केड़ी शादी करनी, मेरे कोल तां पहली नहीं चंगी तरह बैठी शादी।
3: हौसला ना करो।
0: हौसला कित्थों करा, हुण ते ऑनलाइन भी हौसला नहीं मिलदा कितों।
3: पुत्तर होई दा नहीं हुंदा।
0: ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸੋ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਕਿਤੇ।
3: ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੀ ਹੈ?
0: ਕੋਈ ਨੀ, ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ 27 ਜੂਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ।
3: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ।
0: ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
3: ਲੱਡੂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਔਖਾ ਵਾ। ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

0: आज हमारी शादी की सालगिरह थी।
1: थी?
0: तुम्हें घर जल्दी आना था।
1: आना था?
0: हम दोनों को बाहर जाना था।
1: जाना था?
0: किसी बड़े होटल में खाना खाना था।
1: खाना खाना था?
0: अब कौन बनाएगा खाना?
1: खाना? मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन, राइट टर्न टू किचन।
2: ओ चाचा देख, इन्ने लोग आए सी अज दे इस प्रोग्राम हैलो जलंधर दे विच ना तेनू मनाउण वास्ते, ते जेकर तू अज खुश नहीं ना होया ना तां सारे लोगों ने तेरे वर्गे दुखी हो जाना। ते की तू चाहना है कि सारे लोग तेरे वर्गे दुखी होण?
3: नहीं भतीज, मैं नहीं चाहता मेरे वर्गे दुखी होण।
2: ते जे तू चाहना नहीं दुखी होना ना, तो जिहड़ी तू शायरी लिखी सी ना चाची, ते ओह सुणा दे इक वारी।
3: जिहड़ी चाची ने भेजी सी?
2: हाँ हाँ ओही वाली।
3: पत्नी हुसन का पिटारा, गुलाब तारा मून होती है। पत्नी हुसन का पिटारा, गुलाब तारा मून होती है। पति बेचारा होता है, सताई हुई जून होती है।
2: सो बहुत वधिया लगा चाचा जी दे नाल। चलो मैं ते चाचा जी नूं बाहर लैके जाना, इन्हां नूं थोड़ा खवाना पिलाना, थोड़ा बाहरली हवा दवाना। उन्नी देर तक तुसी किते नहीं जाना, क्योंकि जी हुण तों कुछ ही पलां दे विच युववाणी प्रोग्राम, यूथ दे अपने प्रोग्राम की शुरुआत हो जा रही है। सो अज दा युववाणी प्रोग्राम बहुत ही खास है। युववाणी वाले आरजे स्टूडियो दे विच विराजमान हो चुके ने। हुण तों कुछ ही पलां च तुसी सुनन जा रहे हो जी युववाणी प्रोग्राम।

0: गई चुल।
1: बिल्कुल दोस्तों, हाजिर हो गए हैं दोबारा इस गीत तो बात ते। असीं क्वेश्चन पूछिया सी कि इदां दी कीड़ी चीज़ है जिहड़ी जिन्नी ज़्यादा वधदी है उन्नी ही घटदी जाती है। जे एक क्लू दवां ना दोस्तों, ते ओ मतलब साडे रिलेटिड है, साडे कोल हुंदी है, हर एक कोल हुंदी है। ओ एक डिजिट दी भी हो सकदी है, दो डिजिट दी भी हो सकदी है, ते तीन डिजिट तक तां कोई विरला बंदा ही है जिहड़ा पहुँचदा होएगा। ते असीं उहदे लई अपना बर्थडे भी सैलीब्रेट करदे हां। इस तों वध होर की क्लू हो सकदा है?
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, खुशी ने क्लू भी दे दिते आ, क्वेश्चन भी खुशी ने रिपीट कर दिता है, ते साडे नाल जवाब देने लई लिसनर भी जुड़ चुके ने। आओ उनदे नाल गलबात करदे आ ते उहनां दा जवाब जानदे आ। हैलो
3: हेलो।
2: हैलो, सत श्री अकाल जी।
3: मैडम नमस्कार जी।
2: नमस्कार, कौन गल कर रहे हो ते कित्थों बोल रहे हो?
3: मैं अशोक कुमार कबीर विहार रस्ती बाबा साहिब जलंधर से बोल रहे हैं जी।
2: अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम युवाणी दे विच, शो इंजॉय कर रहे हो जी?
3: हाँ जी मैडम जी, मेरा 25 साल बाद फोन लगा जी,
2: जी
3: खुशी बड़ी हो रही।
2: जी जी, बहुत वधिया गल है। ते फिर जड़ी खुशी ने बुझारत पूछी सी अशोक जी, तुसीं ओह सुनी सी जी? जी जी जी, ते फिर जवाब भी दस दियो जी।
3: उम्र है जी।
2: बिल्कुल सही जवाब है अशोक जी, उम्र है जड़ी, जिवें खुशी ने मतलब क्लू भी दिता सी कि असी बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हाँ, सो उम्र ही है जड़ी, जिन्नी वधदी जाती है उन्नी ही घटदी जाती है। अशोक
3: जन्मदिन
2: जी
3: मनाने उन्नी उम्र घटी
2: जी
3: जाती
2: जी
3: है।
2: जी बिल्कुल सही कहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी फोन करके अपना जवाब देने लई। जी जी जी, ते दोस्तों इसे तरह तुसी भी साडी बुझारता दे जवाब दे सकदी हो क्योंकि समां हजे है। ते हुण पहला खुशी ने पूछी सी, हुण वारी मेरी है, सो मैं बुझारत पूछदी हाँ, ते मैं सौखी जी पूछूंगी, देखदे आ कौन जवाब दे पांदा है ते कौन नहीं। ठंडा ठंडा।

समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मकसम सुनते रहिए 102.7 FM।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां तो जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

नमस्कार, पेश ने FM न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो सोमवार तक सेशल्स दे 3 दिन दौरे ते ने। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि MSME खेतर देश की आर्थिकता नू मजबूत करन च महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात दे 14 शहरों च भारत

107.7 FM रेनबो ते हरीश दी आवाज तड़े तक पहुंच रही है और प्रोग्राम तुसी एंजॉय कर रहे हो फिल्मी दुनिया। और असी गल कर रहे हैं पंचम दा दी, और पंचम दा दे रंग दे विच रंगिया होया सी उस इरा दा 70s 80s दा म्यूजिक। और दोस्तों उन्होंने बहुत सारे अणगिणत गाने जड़े ने अणगिणत गाणियां दियां धुनां बनाईयां, और एक ऐसी फिल्म सी जिस दे लई उन्होंने गाने तो जरूर बनाए बट उस दे लई उन्होंने मेहनताना नहीं मिलिया, यानी कि पैसे नहीं मिले। वो केड़ी फिल्म सी? अधूरी फिल्म सी। दरअसल तुहानू दस दें कि प्यासा फिल्म जिस दे गाने दी असी चर्चा भी की थी कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, मतलब आ जा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, सुनिया ना गाना। और ये गाना तो उन्होंने धुन पर बनया सी प्यासा फिल्म, जिस दे प्रोड्यूसर डायरैक्टर एक्टर सी गुरुदत्त साहब, और उस वेले बच्चा छोटा सी पंचम दा, और बेटे ने अपने पापा दे नाल रह के उस फिल्म दे सारे गाने जड़े ने जदों बन रहे सी सचिन देव बर्मन वो गाने बन तैयार कर रहे सी प्यासा फिल्म दे, तां उस वेले छोटा बर्मन नाल नाल ही हुंदा सी और गुरुदत्त उस दी प्रतिभा तो चंगी तरह वाकफ सी। इसे करके जदों थोड़ा वड्डा होया और उन्होंने एक होर फिल्म तैयार की थी राज, और ये फिल्म जदों बननी स्टार्ट हुई 3 रील्स जड़ियां ने इस फिल्म दियां बन भी गई। वहीदा रहमान जड़े है वो इस फिल्म दे विच गुरुदत्त दे ऑपोजिट सी। म्यूजिक तैयार करन दे लई चुनिया गया आर डी बर्मन नू। आर डी बर्मन ने गाने तैयार किए, 5 गाने जड़े ने रिकॉर्ड कर लए गए सी, बट उस फिल्म नू जदों रील्स बन रही सी शूट हो रहा सी सब कुछ, बट कितना कितने गुरुदत्त नू ये लगा कि यार फिल्म ट्रैक ते आ नहीं रही, जो बनाना चाह रहे हो बन नहीं रही। इस करके उस फिल्म नू विच ही बचाले ही छड़ दिता गया, रोक

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो सोमवार तक सेशेल्स दे तीन दिन दौरे ते ने। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि एमएसएमई खेतर देश की आर्थिकता नू मजबूत करन च महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात दे 14 शहरां च भारतीय पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत की। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों अज युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम दे अगले पड़ा सूरमा मुहिम दी शुरुआत। नशा छड़ चुके नौजवान होरना लोकां नूं नशा छड़न च करनगे मदद। पंजाब दे राजपाल ते चंडीगढ़ दे प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया नशियां दी दुरवरतों ते गैर कानूनी तस्करी नूं खत्म करन लई इक सांझी समाजिक लहर दा सद्दा दित्ता है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर च सरहद पारों गैर कानूनी हथियारों की तस्करी के एक होर नैटवर्क का पर्दाफाश करदिया चार मुलजमान गिरफ्तार किया है। ट्रैफिक नियमों की उलंघना करने

ये लड़की कुड़ी एथलीट है महाराज, दौड़दी बड़ी तेज आ, हथ कितों आनी है? ना ना ना महाराज, आ नहीं सकती हुण, एथलीट हथ आ सकती किसी दे? 101.7 FM रेनबो ते हरीश दी आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है और प्रोग्राम तुसीं इंजॉय कर रहे हो, दिल चाहता है। और इस वेले थोड़े मैसेजेस पढ़े जा रहे ने महाराज, जो तुसीं मेरे तक पहुँचाए ने बड़े प्यार दे नाल, और प्यार दे नाल ही मैं पढ़ रहा दिल तो मैसेज पढ़ दें। सत श्री अकाल, दिल चाहता है हरीश जी, बलविंदर सरां, गुणताज, रसनदीप, मनजिंदर सरां, पिंड मोरजन सिखा, हनुमानगढ़, फिल्म चांदनी, गीत दे बोल तेरे मेरे होठों पे, मीठे मीठे गीत मितवा मितवा गाना सुनना चाहते हैं, तो असी इन्हों जरूर सुनावे। चांदनी फिल्म का ये ट्रैक, तो आ जाओ फिर।

लड़के जिंदा हैं, पसंद करता द तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ तो, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा। थैंक यू मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए। एक होर मैसेज मेरे तक पहुँचा जी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक भेजण दे लई जी। और असी एक गाना सुनते हैं जी, तुमसे बिछड़ कर जिंदा हैं।

वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। तुम साथ हो जब मेरे तो दुनिया को दिखा देंगे। महाराज अजकल थोड़ा जहा माहौल डिफरेंट हैगा, और जदों तुम साथ होते हो तो लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ नहीं होता है। और इस करके हर एक इंसान कल्ला कल्ला रहना चाहुंदा है, बट कुछ इदां दे रिश्ते होंदे ने जिथे इकट्ठे हो के ही गल बनदी है कि नहीं। और तुहाडे मैसेजेस मेरे तक इकट्ठे हो के आ रहे ने जी। बिल्कुल, इत्थे भी कम कट्ठो कट्ठी होया पिया, और फटाफट तुहाडे सारयां दे मैसेजेस पढ़ रहा मैं, और चाहुंना कि सारे गाने मैं प्ले करां, बट सारे गाने असीं प्ले कर नहीं सकदे। और इस करके जिन्ने भी मेरे लिसनर्स दे ट्रैक्स प्ले हो रहे ने, और कोई गल नहीं, टेंशन नहीं लैनी, कोशिश है कि सारे दे मैसेजेस पढ़े जान। मैसेज पढ़ते हैं जी। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड होस्ट, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रा, रोजी डिकेस्ट्रा, पर्ल डिकेस्ट्रा, विलिस डिकेस्ट्रा, कोई सोने के दिल वाला कोई, माया फिल्म का ट्रैक, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, या हमें कहते ने कि भी गीत शामिल कर लियो। थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, ये मेरे तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। पदम पुरुष जिला श्री गंगानगर राजस्थान, तो थैंक यू सो मच। और एक और मैसेज आया जी, हरीश सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, कृपया शामिल करें, धन्यवाद, शुक्रिया जी। तुसी शामिल हो गए हो जी, थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुँचाने दिल जी। आरजे को अगला मैसेज है जी, आरजे को आदाब नमस्कार। एनी सॉन्ग धनौरी तेली वाला से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, शुक्रिया जी, शुक्रिया मैसेज मेरे तक पहुँचाने दे लई जी। और एक होर मैसेज है जी, करणवीर हाउस पूछो कैंचियाँ, बठिंडा पंजाब से, नमस्कार जी। नमस्कार, प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दीपिंदर वरविंदर, कुलदीप

सिमू एकम दमन अभिजोत किसी भी गीत में कह रहे ने शामिल करो जी, थैंक यू। और मैसेजेस ते मैसेजेस मेरे तक पहुंच रहे ने, ते फिलहाल असी फरमाइश पूरी करते हैं जी। मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ च प्ले है, गाना प्ले है जी।

107FM रेनबो ते हरीश दी आवाज में सुन रहे हो और कई लिसनर्स कह रहे हैं कि नाराजगी कोई नाराजगी नहीं महाराज और टेंशन नहीं लानी। मैसेज मेरे कोल आया जी, नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो वेद मिड्डा अलका मिड्डा धन्यवाद दल से। हरीश भाई कहिंदे ने कि कोई भी गीत नाराजगी कहिंदे जेकर गाना नहीं सुनाया तो मैं समझांगा कि नाराजगी है, कोई नाराजगी नहीं है जी। और थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुँचाने दी, लिसनर्स दे नाल कादी नाराजगी होनी है, थैंक यू सो मच। कोई नाराजगी नहीं है, मैसेज करो और कल तुहाडी फरमाइश जरूर पूरी होएगी महाराज। सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सनी मनी, काका बिट्टू, लाडी, मास्टर मून, जनक नगर जलंधर तो मैसेज भेज रहे ने जी। सर जी नमस्कार, गुलामी का गाना नहीं सुना सकता जी हुण। सर जी नमस्कार, गुलामी का। हरीश सर नमस्कार, रशपाल कुमार जलंधर तो गुलामी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं बट इस टाइम अप हो गया जी। सत श्री अकाल। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश तो यशमीत, यशु, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, कोई भी गीत सुना दियो जी कह रहे ने। ये मैसेजेस मेरे तक आए आज। आपको प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर तो सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम, थैंक यू मैसेजेस मेरे तक पहुँचाने दे लई। ते इस प्रोग्राम नूं इत्थे वाइंड अप करदे आं और वधदे आं अगे क्योंकि थोड़ा मेरा सफ़र इस तरह अज रहेगा जी ठीक 11 बजे तक।

आगाज महफिल आगाज शाम गजल 107 एफएम रेनबो ते हरीश नाल तुहाडे और इस वेले शाम गजल दा आगाज हो चुका है और ए गहराओं दी हुई रात होर भी सोहनी होएगी होर भी सुकून भरी होएगी जदों इन्हां गजलां दे विच लुके हुए अल्फाज एहसास तुहाडे तक पहुंचणगे और टुंबणगे तुहाडे दिल नूं और कहणगे तुहानू जगा के कि एहसास उही है ना जो कदे विछड़ गया सी तेरे कोलों जो कदे जुदा हो गया सी तेरे कोलों देख अज मैं फिर तेरे कोल हाँ अज मैं फिर तेरे अंदर समा रहा हाँ अज मैं फिर तेरा हाँ अज मैं फिर तेनू मिलन आया हाँ अज मैं फिर तेरिया अखां च समा रहा हाँ हंजू बन के अज मैं फिर तेनू मिलन आया हाँ तेरा बन के।

कुछ रिश्ते नाम से नहीं, नाम से महसूस ही नहीं होते। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, महसूस से, फील से जिंदा रहते हैं। वक्त के शोर में भी चुपचाप से खड़े रहते हैं। ना कोई वादा था, ना कोई कसमें निभानी थी, फिर भी जाने कैसे कुछ लोग अपने हो जाते हैं। यादों की भी अजीब दुनिया है ना, जो बीत जाता है बस वही रह जाता है, जो कहीं नहीं पाए वही दिल में गहराता चला जाता है, वही दिल में गहराता चला जाता है, और वही हमारे दिल में, हमारे आसपास, हमारी रूह में खुशबू की तरह समाते जाते हैं, समाते जाते हैं।

तुम्हारी याद कोई दस्तक नहीं देती, तुम्हारी याद कोई दस्तक नहीं देती, बस चुपचाप आकर बैठ जाती है, कभी किताबों के पन्नों में, कभी खिड़की से आती हुई धूप में। मैं बहुतों के बीच होता हूं पर सुनता सिर्फ तुम्हारी ही आवाज हूं, तुम्हें पुकारता नहीं क्योंकि डरता हूं कहीं याद भी जवाब मांगने लगे। समय ने बहुत कुछ बदल दिया पर तुम्हें याद करने का तरीका नहीं बदला। आज भी वही खामोशी, वही बेचैनी, वही अधूरापन, बस अब उसे जीना आ गया है, तुम्हारे बिना जीना आ गया है, तुम्हारी याद के साथ, तुम्हारी याद, सिर्फ तुम्हारी, तुम्हारी याद।

पता है, कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आते, लेकिन वो हमारे जीवन में इतना प्रेम भर जाते हैं, हमें इतना प्रेम दे जाते हैं कि हमेशा के लिए हम बदल जाते हैं। और तब समझ आता है, प्रेम का अंत बिछड़ना नहीं होता। प्रेम का अंत तब होता है जब दिल से दुआएं खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे के लिए। चाहे जहां भी रहें, एक दूसरे से चाहे बिछड़ जाएं, लेकिन एक दूसरे से मिली मोहब्बत, वो प्यार कभी नहीं भूलता, कभी नहीं दिल से जुदा होता, और ना ही होना चाहिए, है ना। खिले हुए फूलों की तरह हमेशा रहना चाहिए।

एक दिन तुम समझोगे, जरूर समझोगे, कि जो रास्ते तुमने चुपचाप छोड़ दिए थे वे कहीं और जाकर फूल बन गए, और जो लोग तुम्हारी कहानी में अधूरे रह गए वे किसी और की कहानी में पूरी तरह से लिख दिए गए। तब तुम्हें लगेगा जैसे समय ने तुम्हें, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी ही संभावनाओं को किसी और के जीवन में जी लिया हो, और तुम बस देखते रह जाओगे अपनी ही कल्पना को किसी और

कौन कहता है कि बढ़ती उम्र के साथ लगाव खत्म हो जाता है। मोहब्बत तो जितनी पुरानी होती है उतनी और ज्यादा बढ़ती जाती है। मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं ये मोहब्बत इसी तरह से ताउम्र करता रहूंगा, सिर्फ तुम्ही से, सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से। आज तक किसी और को देखा नहीं है और ना ही देखने की चाहत है। तुम मेरे दिल में थी और मेरे दिल में ही रहोगी, तुम्हारी याद की तरह जो हर रोज मेरे पास आती है दिन ढले।

कभी रास्ते बदल गए, कभी इरादे बदल गए। हम ना बदले मगर तेरे वादे बदल गए। मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए। गहरों से क्या गिला जब हमारे अपने ही बदल गए। हाँ तुमसे तो गिला।

हो ही सकता है मुझे, और ये बात भी सत्य है कि मैंने तुमको नहीं कहा था कि मुझसे इश्क करो, तुमने भी नहीं कहा था। ये इश्क, ये मोहब्बत, न जाने कैसी चीज़ है, अपने आप हो जाती है और फिर हमेशा साथ रहती है, हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास है ना।

तू लाख बुरा कहता है मुझे, मगर मैंने तुझे बदनाम नहीं किया। लोग पूछते रह गए मेरी उदासी की वजह, मगर मैंने तेरा नाम नहीं लिया। तो लौट कर कभी आया ही नहीं मेरे पास, मैंने भी तुम्हारा इंतजार नहीं किया। तू आखिरी आखिरी शख्स थी जिसे मैंने चाहा था। तेरे बाद मैंने किसी और से प्यार नहीं किया, नहीं, मैंने किसी और को नहीं चाहा तेरे सिवा।

मैं अक्सर ये सोचता हूं, अगर इश्क ना होता तो क्या होता। ये गुलाब, ये खत, ये तस्वीरों का क्या क्या होता, और इनकी क्या कीमत होती। ये गुलाब बस एक फूल होता, ये खत सिर्फ एक कागज होते, ये तस्वीरें बेजान होती। मैं सोचता हूं, अगर ये इश्क ना होता तो क्या होता। ना होता बारिशों का इंतजार, ना होता बातों का इकरार, ना आंखों से बातें होती और ना ही बिरहा में बिदाई गई वो रातें होती। लाल रंग भी फिर सिर्फ एक रंग होता। मैं सोचता हूं, अगर ये इश्क ना होता तो क्या होता। क्या आपको भी यही लगता है ना?

मेरे एकांत में वो है, पर मेरी एकाकी का हिस्सा भी नहीं है। वो नूर है जिससे रोशन है हर रात, और मैं वो सांझ जिसे अंधेरा ही नसीब हुआ। किस्मत उनकी उनसे पूछो जिनके लिए एक झलक ही सुकून की बारिश जैसी है। राहों में ही मिले और राहों में ही बिखर गए। ना उसकी दुनिया में कुछ नया सा लगता है और ना मेरे नसीब में वो पल आए, ना मेरे अपनों में, ना मैं भी उसके रिश्तों में कहीं हूं। मेरे एकांत में वो है, पर मेरी एकाकी का हिस्सा नहीं। मैं तो उसे यही कहता हूं अब। 102.7 FM रेनबो ते तुहाड़ा ते मेरा साथ अज दा इत तक ही सी। जिंदगी दे सफर च तुहाड़े नाल दोबारा मुलाकात होएगी। तद तक लई बाय, टेक केयर। इस रात दा ए अखीरला ट्रैक तुहाड़ी पेश खिदमत है, ब्यूटीफुल ट्रैक। आओ सुनते हैं।